0: 가리지 않지.
1: 오호, 멋지고요. 빨리 불안한 머신 번다고.
2: 따라오고 있으면서 사이나 나야 군나잇 보내고 서 에스토 어드밴스 포뮬라리 준철서 버티 가이고 2 घंटा 퍼시상
1: 나야 포뮬라 가이고 나야 굿나잇 리고
3: हे भगवान मेरे सेतो कपल घुरी रखने वाला था
4: 24
3: 24 सेतो सेतो कपल
4: 24 फ्लोर
5: सेतो कपल को चिंता छोड़ने होस रहा रोजरेस एक्सपर्ट फेस क्रीम ने कलर करने होस यस मसाज एलोवेरा अब कपल देखने से सॉफ्ट एंड शाइनी रोजरेस एक्सपर्ट फेस क्रीम
6: एंड होस ब्रह्माजी मजा छ तपाईस म पनि हेर्छु कि कस्तो दानव रहेछ जसले सृष्टिको रचयिता सँग उसको लोक खोज्न चाहन्छ
7: मित्र कैटप कतै हाम्रो कानलाई भ्रम त भइराको छैन
8: तिम्रो भ्रम बस केही समय पश्चात टुट्नेछ जसको कानबाट तिमीले जन्म लिएका छौ वहाँकै हातबाट तिम्रो मृत्यु हुनेछ
7: तिमीको आफ्नो परिचय दिएर हामीलाई कृतार्थ गर
3: म माया हुँ आफ्नो इच्छाले आउँछु अनि आफ्नो इच्छाले जान्छु